माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निरोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे राम फाटक के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए स्वामी स्वरूपानंद की रचना शंकर घाणेकर के स्वर में।

श्रोताओं, अमृता गोखले के स्वर में आप सुन रहे थे वसंत बापट की रचना। कार्यक्रम में अब सुना रहे हैं नामदेव महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है दीपक पाटेकर ने।

संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था दीपक पाटेकर ने। भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अंत में अब सुनिए श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आपने श्रीकांत पारगावकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र का निर्माण था। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तहत लीजिए प्रस्तुत है राग अलहिया बिलावल पर सितार वादन. कलाकार हैं दीपंकर दत्ता. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं नारू गोपाल पात्रा.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल्स. Listen first to a sitar recital in the rag Alahia Bilawal. Our artist is Dipankar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग कोमल आशावरी पर वायलिन वादन। कलाकार हैं तरुण कुमार चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर हैं देवोजीत बंदोपाध्याय।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल। लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग कोमल आशावरी। आवर आर्टिस्ट इज Tarun Kumar Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Deepjeet Bandyopadhyay.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी राग कोमल आशावरी पर वायलिन वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन। प्रस्तुत है राग केदार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी। उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी प्रेजेंट्स राग केदार, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

ये था राग केदार। उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारी अपने शहनाई वादन का समापन सुगम धुन से कर रहे हैं। दैट वॉज राग केदार। उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी कंक्लूड्स द शहनाई रिसाइटल विथ सुगम धुन।

ये थी सुगम धुन। आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज सुगम धुन। यू वेर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग श्याम कल्याण में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल बाय उस्ताद सईद जफर खां. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग श्याम कल्याण in which you will listen to Alap, Jod and Jhala. The Vilambit and Rudgat is set to Teen Taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak.

0: जय जयवंती। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिस्निंग टू राग श्याम कल्याण ऑन द सितार बाय उस्ताद सईद जफर खान। ही नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जयवंती। यू विल हियर द आलाप एंड गत सेट टू अद्धा चौताल। ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक।

0: अभी आप उस्ताद सईद जफर खां का सितार पर बजाया राग जयजयवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: With that rendition of राग जयजयवंती on the sitar by उस्ताद सईद जफर खां, we come to the end of this program of Hindustani classical music, which featured a sitar recital by उस्ताद सईद जफर खां. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

Ganizani,

हाजरीन, मैंडोलिन पर एक और अनोखा काम पेश करने से पहले उसके बारे में बताना जरूरी समझता हूँ। एक सबसे अलग और अनहोनी बात की तो स्ट्रिंग यानी मैंडोलिन की खूंटी को घुमाकर राग अदा करना, जिसमें आप वीणा का टोन महसूस करेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंडोलिन पर इस तरीके से बजाने के ईजाद करदा यानी इन्वेंटर ऑफ दिस स्टाइल मेरे वालिद और उस्ताद मैंडोलिन विजर्ड जनाब सज्जाद हुसैन साहब, जो पहले शख्स हुए हैं जो खुद अपनी मिसाल आप हैं। शुक्रिया।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुंवर राजेंद्र सिंह का स्वरलीन वादन। प्रस्तुत है राग चंद्रकौंस। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित मदन मिश्रा। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट स्वरलीन वादन बाय कुंवर राजेंद्र सिंह। ही प्रेजेंट्स राग चंद्रकौंस, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा।

ये था राग चंद्रकोस। आप सुन रहे थे कुंवर राजेंद्र सिंह से स्वरलीन वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे पंडित मदन मिश्रा। आइए सुनते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। प्रस्तुत है राग तुलसी कोस। इसमें आलाप जोड़ झाला तथा धमार ताल में निबद्ध गत प्रस्तुत है। दैट वॉज राग चंद्रकोस। यू आर लिसनिंग टू स्वरलीन रिसाइटल बाय कुंवर राजेंद्र सिंह। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा। वी प्रेजेंट सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। ही प्रेजेंट्स राग तुलसी कोस इन विच ही प्लेज आलाप जोड़ झाला एंड गत इन धमार ताल।

ये था राग तुलसी कंस। आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग तुलसी कंस। यू वर लिसनिंग टू सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं रमा चौधरी. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण में ख्याल, कलाकार रमा चौधरी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present a Hindustani vocal recital.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग शुद्ध कल्याण में ख्याल सुन रहे थे। आज की कलाकार थी रमा चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रागेश्वरी में

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी यह राग रागेश्री में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे नवारुण चौधरी। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मृण्मय सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग रागेश्री। आवर आर्टिस्ट वाज नवारुण चौधरी। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वाज मृण्मय सरकार। दिस प्रोग्राम वाज अर्लियर रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन कलाकार है महंत विजय रामदास सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीर्ष त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विरंच सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धारिंदा धारिंदा धारिंदा जय जय मन मधारी धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपाधर चरण शरण नित ध्यावत गौर वरण भुज इंद्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर

गिंतरांधा

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकता त्रिकृतकता धित धित धे धे धे कृतेता धेता धल धल धल धल धिलांग घितान कृताट धुम कृतकता धृकृतक धे धे धक टकिट धागे तेटे कतिट धा कृतक त्रिकृतकता त्रिकृतक त्रिकृतकता धा झम के झू मत सुंड फेरत क्या मूर्ति गजाननम त्रिकृतेत धे धे धे गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूस वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धा कृतक धुम कृतक धक कृतक धुम कृतक गिरिंगदा धुम कृतक गिरिंगदा धुम कृतक गिरिंगदा कृतक धक धुम कृतक गिरिंगदा धुम कृतक गिरिंगदा धुम कृतक गिरिंगदा कृतक धक धुम कृतक गिरिंगदा धुम कृतक गिरिंगदा धुम कृतक गिरिंगदा धा गिन

जटा घटा महचंद्र छटा धकट धाधा त्रिपुंड राजे मुंड वक्षस्थल साजे कर्तृशूल चम चम चम चमकत भरत सबार मार मदमर शांत स्वरूप अनूप सकल सुरभूप मुकुटमणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनगन नित धाधा दिंताधा कृधान धकट टिकट धकट धकट धान तान धकट टिकट धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला धान तान धकट टिकट धान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला दान दान धगत टिकृधान बंभूला बंभूला बंभूला बंभूला।

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DGH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is RUM 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है प्रकाश साळुंखे। प्रारंभ में आपने प्रस्तुत किया राग सरस्वती सुन है, विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है लागे तुमरे चरण, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है साजन आए ना। साथ संगत तबला रोहन चिंसोरकर और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग सरस्वती।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग सरस्वती। और अब कार्यक्रम में सुनते प्रकाश साळुंखे द्वारा प्रस्तुत राग मिया की तोड़ी। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है अब मोरे राम, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रश के बोल है लंगर का करिए जिन मारो। साथ संगत तबला रोहन चिंचोरकर, हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग मिया तोड़ी, कलाकार प्रकाश साळुंखे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रकाश साळके द्वारा प्रस्तुत राग मिया की तोड़ी। आपके साथ तबले पर थे रोहन चिंचोरकर, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है काकुली मुखर्जी की गाई ठुमरी. बोल हैं जाओ वही तुम श्याम. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने.

0: अभी आप काकोली मुखर्जी की गाई ठुमरी सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए दादरा बोल हैं अजहू न आए हमरे सैया।
1: यू जस्ट हर्ड अ ठुमरी इन कमाज। लिसन नेक्स्ट टू अ दादरा।

0: अभी आप काकुली मुखर्जी का गाया दादरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने। और लीजिए अब सुनिए दादरा, बोल है मोरे बलमुआ नहीं आए। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने।
1: यू जस्ट हर्ड अ दादरा बाय काकुली मुखर्जी। कंटिन्यूइंग विद हर वोकल रिसाइटल, शी प्रेजेंट्स अनदर दादरा।

0: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए काकोली मुखर्जी का गाया दादरा, बोल हैं शाम तोहे नजरिया लग जाएगी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने।
1: यू जस्ट हर्ड अ दादरा संग बाय काकोली मुखर्जी। शी कंक्लूड्स हर रिसाइटल विद अनदर दादरा।

0: अभी आप काकोली मुखर्जी की गाई ठुमरी और दादरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट दादरा वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय काकोली मुखर्जी। शी वॉज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अख्तर हसन। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: is Ragam 247 DTH, Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेळा की भक्ति रचना।

जय श्री कुलनी के स्वर में संत चोखा मेणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं दीपक पाटेकर के स्वर में समर्थ रामदास की ये भक्ति रचना।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी दीपक पाटेकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब समूह स्वर में सुनते हैं संत भानुदास की भक्ति रचना, जिसके संगीतकार हैं बाल भाई।

संत भानुदास की भक्ति रचना अभी अपने समूह स्वर में सुनी, जिसके संगीतकार थे पाल माली। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना सौमिक शाह के स्वर में।

सौमिक शाह के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमुद कुलकर्णी के स्वर में संत तुलसीदास ने रची ये हिंदी भक्ति रचना।